नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा।

0: प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैशे मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी खरसाङ। अब अघिल्लो क्रममा प्रस्तुत छ बिहानी सूचनाको कार्यक्रम शुभ प्रभात, जसमा खेतीपाती बारे केही सुझाव साझा गर्नेछौ, साथै सुनाउनेछौ आधुनिक गीत। आज कुराकानी गर्नेछौ अलैँचीको विस्तार बारे। पहिले सुन्नुहोस् पेमा लामाको स्वरमा यो गीत।

0: उपायुक्त जेसिका रोसवाल बीचको छलफलमा दुवै पक्षले ईयू नियामक ढाँचा अन्तर्गत मान्यता खोज्ने भारतीय जहाज रिसाइक्लिङ यार्डहरूको लागि चलिरहेको लेखा परीक्षण र अनुपालन प्रक्रियाको समीक्षा गरे। 30 भन्दा बढी भारतीय जहाज रिसाइक्लिङ यार्डहरूले ईयू मान्यताको लागि आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये 6 यार्डहरू हाल अनुपालन र स्वीकृति प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन्। 3 जहाज रिसाइक्लिङ सुविधाहरूले सबै आवश्यक अनुपालन प्रक्रियाहरू सफलतापूर्वक पूरा गरेका छन् र अब ईयू जहाज रिसाइक्लिङ नियमन ढाँचा अन्तर्गत समावेशको लागि आवेदन दिन योग्य छन्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको गतिशील नेतृत्वमा भारत विश्वको अग्रणी जहाज रिसाइक्लिङ राष्ट्रको रूपमा देखा परेको छ र सुरक्षित वातावरणीय रूपमा दिगो र जिम्मेवार जहाज रिसाइक्लिङको लागि विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई निरन्तर बलियो बनाउँदैछ भनी श्री सर्वानन्द सोनोवालले भन्नुभयो। व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको पछिल्लो अनुमान अनुसार विश्वव्यापी जहाज पुनचक्रणमा भारतको हिस्सा 2024मा 30.1% बढेर 2025मा 35.4% पुगेको छ। देशले 2025मा 2.99 मिलियन ग्रस टन जहाजहरू पुनचक्रण गरियो, जुन 2024मा पुनचक्रण गरिएको 1.86 मिलियन जीटी भन्दा लगभग 60% वृद्धि हो। भारत सरकारले लेखा परीक्षण निरीक्षण र नियामक अनुपालनको पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत भारतीय जहाज पुनचक्रण यार्डहरूको सूचीकरणलाई सहज बनाउँदैछ। मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो, भारतीय सुविधाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न पूर्वाधार र सञ्चालन अभ्यासहरू तरोन्नति गर्न महत्वपूर्ण लगानी गरेका छन्, जसले दिगो समुद्री विकास र जिम्मेवार पुनचक्रणप्रति देशको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। भारतीय जहाज पुनचक्रण सुविधाहरूलाई बलियो वातावरणीय पूर्वाधार र कामदार कल्याणकारी उपायहरूद्वारा समर्थित छ, जसमा फोहोर प्रशोधन प्लान्टहरू, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीहरू, रेडक्रस सोसाइटीहरूद्वारा समर्थित बहुविशेष स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू र कामदारहरूको लागि समर्पित आवास समावेश छन्। श्री सोनोवालले वातावरणीय अनुपालन, कामदार सुरक्षा र सञ्चालन पारदर्शिताको उच्चतम मापदण्डहरू निरन्तर कायम राख्न सरकारले आवधिक र अघोषित रूपमा निरीक्षण गर्ने कुरा पनि दोहोर्याउनुभयो। भारतको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्रकाश पार्दै श्री सोनोवालले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भारतीय रिसाइक्लिङ सुविधाहरूको संख्या विस्तार गर्नाले रोजगारी सृजना गर्दै र समुद्री दिगोपनलाई सुदृढ गर्दै वातावरणीय रूपमा स्वस्थ रिसाइक्लिङ अभ्यासहरूलाई प्रवर्धन गरेर विश्वव्यापी सर्कुलर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
1: अब केही बेरमा समाचार गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे।

0: श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 trillion के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्टुअ ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के

0: बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening.

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
0: पापा
4: समय बिहान को 8:45 भइरहेछ। सुनिरहनु भएको छ आकाशवाणी खरसाङ FM 103.5 मेगाहर्जमा। अबको प्रस्तुति रहेको छ कार्यक्रम योजना, जसमा सरकारद्वारा प्रायोजित परियोजनाहरूबारे जानकारी साझा गर्नेछौँ, साथै सुनाउनेछौँ केही सङ्गीत। योजनाबारे कुराकानी गर्न अघि आनन्द लिनुहोस् सङ्गीतको। फिल्म चल्तीका नाम गाडीबाट शब्द मजु अनि सङ्गीत ST बर्मनको रहेको छ भने, स्वर रहेको छ आशा।

तिमी रे सनम, शब्द मजरू अनि संगीत ओपी नैयरको, अनि स्वर थियो आशा भोसलेको। अब अर्को गीत सुनाउन गइरहेछौँ फिल्म तीसरी मंजिलबाट, शब्द मजरू, संगीत राहुल देव बर्मनको।

0: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ 32 ম্যাচে আর্জেন্টিনার ঊর্ধ্বশ্বাস ম্যাচে কাবো ভার্দেকে 3-2 গোলে হারিয়ে রাউন্ড অফ 16 উঠেছে। অন্য ম্যাচে গতরাতে মিশর অস্ট্রেলিয়াকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে রাউন্ড অফ 16 ওঠে। রাউন্ড অফ 32 শেষ ম্যাচে আজ কলম্বিয়া ঘানাকে 1-0 গোলে হারিয়ে শেষ 16 উঠেছে। কলম্বিয়ার হয়ে 14 মিনিটে গোল করেন জন আরিয়াস। এদিকে বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ 16 পর্ব আজ রাতে শুরু হচ্ছে। এই পর্বের প্রথম ম্যাচে কানাডা মরক্কোর মুখোমুখি হবে। হাউস্টন স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত 10:30। পুরুষদের ক্রিকেটে ভারত ও ইংল্যান্ড আজ টি-20 সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হবে। ম্যানচেস্টারে খেলা শুরু হবে সন্ধে 7:00। চেস্টারলি স্ট্রিটে 5 ম্যাচের সিরিজের প্রথম খেলাটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। টি-20 সিরিজের পর দুই দল 3 ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজস্থান ও গুজরাট সফরে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। সোমবার তিনি 6 দিনের ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফর শুরু করবেন। গুজরাট পুলিশ নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জৈশ-ই মোহাম্মদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে 8 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইউরোপে মারাত্মক তাপপ্রবাহের জেরে খরা পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলে রাউন্ড অফ 32 শেষ দিনে আর্জেন্টিনা, মিশর এবং কলম্বিয়া শেষ 16 উঠেছে। খবর শেষ হলো, এরপর স্থানীয় সংবাদ শুনবেন 10:10।
1: यो आकाशवाणी खरसाङ हो। प्रादेशिक समाचार मुस्कान राईबाट सुन्नुहोस्। पश्चिम बंगाल सरकारले नागरिक सेवाहरूलाई अझ पारदर्शी, सरल र पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यमा खतियान र जमिनको प्लट सम्बन्धी जानकारी लिने आवेदन शुल्क यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरिएको घोषणा गर्नुभयो। सोसल मिडियाको एक सन्देशमा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, राज्य सरकार यो सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ, नागरिक सेवाहरू पारदर्शी, झन्झटमुक्त र सबैका लागि सजिलैसँग सुलभ छन्। यसका लागि अघिल्लो सरकारको पालामा भूमिको अभिलेख र प्लट सम्बन्धी जानकारी लिन लाग्ने आवेदन शुल्क यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब राज्यका नागरिकहरूले आफ्नो खतियान र भूमि प्लटको जानकारीको डिजिटल हस्ताक्षर गरिएको प्रतिलिपि बिना कुनै शुल्क अनलाइन डाउनलोड गर्न सक्षम हुनेछन्। यसका लागि कुनै पनि आवेदन शुल्क वा प्रमाणीकरण शुल्क तिर्नु पर्दैन। यो निर्णयले राज्यभरका सबै जमिन मालिकहरू, विशेष गरी किसानहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ। लोकसभाका अध्यक्ष ओम बिरलाले हिज कोलकाताको न्यू टाउन कन्भेन्सन सेन्टरमा पश्चिम बंगाल विधानसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूका लागि 2 दिने संसदीय तथा विधायी कार्य सम्बन्धित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोह अघि श्री बिरलालाई गार्ड अफ अनरद्वारा सम्मानित गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजू, राज्यसभाका उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह, विधानसभाका विपक्षी दलका नेता रिता व्रत ब्यानर्जी र विधानसभाका अध्यक्ष रथिन्द्र बोस उपस्थित थिए। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले वर्तमान पश्चिम बंगाललाई श्यामा प्रसाद मुखर्जीले 1947 बंगालको तत्कालीन विधान परिषदमा समावेश गर्ने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले अखिल भारतीय तृणमूल कंग्रेसका प्रतिद्वन्द्वी गुटहरूसँग पार्टीको संगठनात्मक चुनावको बारेमा उनीहरूको विरोधाभासपूर्ण दावी र आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताहरूसँग जवाफ मागेको छ। आयोगले एक विज्ञप्तिमा ममता ब्यानर्जी र पार्टी नेता रिता व्रत ब्यानर्जीलाई यस सम्बन्धमा दुवै पक्षको दावी र प्रतिदावीको बारेमा छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेको छ। दुवै पक्षलाई सोमबार साँझ 5 बजेर 30 मिनट भित्रसम्म जवाफ पेश गर्ने निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। सिलगढीको माटीगढा क्षेत्रमा पछिल्लो लामो समयदेखि चलिरहेको अवैध जमिन व्यापार विरुद्ध पुलिसले व्यापक कारवाही गर्दै 3 जना कथित भूमाफियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जानकारी अनुसार माटीगढा क्षेत्रमा लामो समयदेखिकै जमिनमा अवैध रूपमा कब्जा गरी त्यसलाई गैर कानूनी ढङ्गमा किनबेच गरिएको शिकायत आइरहेको थियो। स्थानीय मानिसहरू तथा विभिन्न संगठनहरूले बारम्बार यस मुद्दालाई उठाउँदै आइरहेका थिए। माटीगढा थानाको पुलिसले पक्रा पर्ने आरोपीहरू विरुद्ध विभिन्न धाराहरूमा मामिला दर्ता गरी अघिल्लो कारवाही सुरु गरेको छ। मिरिक महकुमा अन्तर्गत सौरेनी क्षेत्रका कृषकहरूलाई कफी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्ने तथा वैकल्पिक खेतीको रूपमा कफी खेतीलाई पनि अपनाउन सक्ने उद्देश्यका साथ मेवा मल्टी एग्रो प्रोसेसिङ आरईएच इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ सोसाइटीले लोअर तोकलाङमा एक सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सिन्कोना बगान मङ्पुका निर्देशक डाक्टर सामुएल राई, मिरिक पञ्चायत समितिका चेयरम्यान कैलाश खस लगायत सौरेनी ग्राम पञ्चायत एक अनि दुईका प्रधान उपप्रधान सदस्यहरू लगायत पञ्चायत समितिका कर्माध्यक्षहरू उपस्थित रहेका थिए। यसैबीच तोकलाङ सौरेनी भेगका कृषकवर्गलाई उन्नत जातको कफीको बिरुवा वितरण पनि गरिएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ लिङ्गिया समष्टि अन्तर्गत मेरिबुङ शाखा समष्टि अध्यक्ष जेके राईको सभापतित्वमा एक महत्त्वपूर्ण साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो। सभामा सङ्गठनलाई थप सुदृढ सक्रिय तथा जनमुखी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। साथै पार्टीको साङ्गठनिक विस्तार, कार्यकर्ताबीच आपसी समन्वय र आगामी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव तथा निर्णयहरू समेत गरिएको जनाइएको छ। पुटुङ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सेवा समाज सिलगढीको आयोजनामा किशोर अवस्थामा विद्यार्थीहरूले अप्नाउनु पर्ने विविध सावधानी विषयमा एक सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरियो। विद्यालय प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विद्यार्थी लगायत शिक्षक शिक्षिकाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी खरसाङबाट पूरा भयो। अघिल्लो समाचार लिएर अहिले 10 बजे उपस्थित हुनेछौँ। सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी।
2: समाचारपछि अब प्रस्तुत छ हिन्दी नाटक बोनसाई, लेखक ए भास्कर।
3: यह आकाशवाणी है बोनसाई। नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री ए भास्कर चंद्रा के तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद प्रोफेसर आई एन चंद्रशेखर रेड्डी ने किया है। तो सुनिए नाटक बोनसाई।

0: अकेला छोड़कर चली गई। ओह कितनी भीड़, सब कैसे जल्दी में जा रहे हैं, किसके लिए वो दौड़ रहे हैं और किसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बस बस, बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए, उन्हें डॉक्टर व इंजीनियर बनना है, काफी पैसा कमाना है, इसी के लिए है ये दौड़। आपने देखा इस दुनिया के माँ बाप कितने पागल होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को बस डॉक्टर व इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य के रूप में, मानवता से भरपूर आदमी के रूप में बनाने की शिक्षा कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। सुनिए सुनिए, सभी माता पिताओं जरा गौर कीजिए, अगर आप बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हैं तो उन्हें वृक्ष जैसा बढ़ने दीजिए, खुली हवा में मुक्त रूप से बढ़ने पर ही पेड़ अच्छी ठंडी छाया दे सकता है। लेकिन उन्हें पैसा कमाने वाली मशीन मत बनाइए, मत बनाइए। केवल पैसा कमाने वाली मशीन मत बनाइए।
1: सितारे लाए ऊंची पहाड़ी लांग कर, फूलों का गुच्छा बांध कर,

0: जय सो गए क्या कौशल्या?
1: जी हाँ, आपका इंतजार करते करते सो गए हैं। करुणा तो यही सोफे पर ही सो गई है और अभिमन्यु वहाँ पलंग पर।
0: ये क्या, इसने स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं उतारा?
1: असल में वो आपका इंतजार इतनी देर तक करता रहा।
0: लेकिन क्यों, यूनिफॉर्म तो बदलना चाहिए था।
1: अजी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देखिए, फर्स्ट रैंक मिला है।
0: अच्छा?
1: हाँ, और उसका कहना है कि जब आप उसे बैटरी कार खरीद कर देंगे ना, तभी वो अपनी यूनिफॉर्म बदलेगा।
0: अभिमन्यु सीधा नहीं है, जो भी काम करता है उसमें नफा नुकसान देखता रहता है।
1: आपने ही उसे ऐसा बनाया है।
0: मैंने?
1: और नहीं तो क्या। जैसे सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रियों के बारे में अर्जुन से सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए उसमें इतना युद्ध कौशल आया। यही सोचकर आपने बेटे को गर्भ में रहते ही गणित विज्ञान के पाठ को पढ़ाया।
0: जी हाँ, पढ़ाया है, इसमें गलत क्या है? असल में माँ के गर्भ में रहने वाला शिशु 6 महीने बाद बाहर की आवाजों की और माँ बाप के स्वरों की पहचान करते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है, मालूम है ना?
1: बस बस बस बस, आपकी अकल बंदी की तो तारीफ करती हूँ। अच्छा चलिए ना, आकर आइए, खाना तैयार है। सुनिए, देखिए कितनी नादान सी करुणा सोफे में सो रही है। पगली कहीं की, ये मेरे ऊपर गई है
0: फिर तो किसी भी काम की नहीं रह पाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपसे शादी करने के बाद मैं भी ऐसी हो गई हूँ।

0: ए करुणा, ये फोटो एल्बम देखते हुए हंसी क्यों आ रही है तुझे?
1: अरे अभी भाई, इस फोटो को देखो, ये तुम हो ना?
0: हाँ, हूँ तो मैं ही।
1: हाथ में बैटरी कार, मुंह में चॉकलेट, आंखों में आंसू, नाक से पानी बह रहा है।
2: तो क्या हुआ?
1: स्कूल जाने के लिए बहुत रो रहे थे क्या?
2: अरे स्कूल जाने के लिए नहीं, बल्कि हॉस्टल भेजा जा रहा था मुझे, समझी?
1: ओह, हॉस्टल जाने से कोई ऐसे रोता है क्या?
2: अरे माँ बाप को छोड़कर नई जगह पर अकेले जाने में डर नहीं लगता क्या? वैसे बड़ी डींग हाँक रही है तुम। ये देख देख देख देख देख, तेरे भी फोटो हैं। ये देख देख इसे, सोफे में टेडी बियर लेकर और चादर ओढ़कर कैसे बंदर की तरह रो रही है।
1: भैया
3: कोई है घर में?

0: अरे शंकर मामा जी, आप आइए आइए आइए आइए।
1: नमस्ते मामा जी।
2: नमस्ते नमस्ते। अभिमन्यु तुम कब आए?
3: जी दो दिन हो गए।
2: छुट्टियां कब तक हैं?
3: अगले हफ्ते तक मामा जी।
2: बहुत खूब। करुणा
1: जी,
2: तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला है ना आजकल में?
1: वो, हाँ मामा जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
2: अच्छा अच्छा, भाई तुमने बताया था कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनी वाले कॉलेज कैंपस में आते रहते हैं और पढ़ाई के दौरान ही लड़के लड़कियों का नौकरी में सिलेक्शन भी हो जाता है, क्यों तुम्हें कोई ऐसा चांस वास मिला के नहीं?
3: मामा जी नाम तो मेरा भी आ गया है।
2: बेटा ऐसे दुखी होकर क्यों बोल रहे हो? अरे लोगों को पढ़ाई खत्म करने के बाद साल दर साल नौकरी नहीं मिलती, और इस जमाने में तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी मिलना तुम्हारा भाग्य है अभिमन्यु।
1: मामा जी इसे वो नौकरी पसंद ही नहीं। ये अमेरिका जाकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है ताकि अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह मिले, हो सकता है वही बस भी जाए।
2: जीजा जी का क्या विचार है, वो खुश हुए कि नहीं?
3: मेरे करियर के मामले में पापा कभी मना नहीं करते मामा जी।
1: मामा जी इसकी बात पापा ने कब ठुकराई है जो अब मना करेंगे?
2: करुणा ये कौन से पौधे हैं, बहुत विचित्र हैं।
1: ये बॉन्साई है मामा जी।
2: क्या है? बॉस नाए?
1: बॉस नाए नहीं मामा जी, बॉन्साई।
2: नई किस्म का पेड़ है भाई, देखने में बरगद जैसा लग रहा।
3: बरगद ही है मामा जी।
2: बरगद? बरगद कहीं गमले में उगता है?
1: उगता है मामा जी, इस प्रकार के पेड़ जापान में अधिक होते हैं। साधारण बरगद के बढ़ने को रोककर, यानी टहनियां और जड़ें लगातार काटने पर कुछ दिनों के बाद उसका बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे बोने जैसे पेड़ हो जाते हैं, उन्हें घरों में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
2: छी छी छी छी, पेड़ों की जड़ों को काटना पाप है पाप। भाई पेड़ को पूरी तरह बढ़ने देना चाहिए, वो फैल कर कई लोगों को छाया देता है। लेकिन तुम इस तरह पेड़ की जड़ें काट कर, ओ सब कलयुग है कलयुग।
3: ओ शंकर भाई साहब,
2: हाँ
3: कैसे हैं?
2: ठीक है।
3: कलयुग कलयुग कहते हुए समय को कोस रहे हैं।
2: मैं समय के साथ दौड़ने में असमर्थ हूँ, भला क्या कर सकता हूँ? इस गमले में लगे बरगद के पेड़ को देखकर ऐसा कहा मैंने।
3: ओ,
2: इस महावृक्ष को बौना बनाना घमंड का चिन्ह है।
3: भाई साहब हम जानते हैं कि आप टीचर हैं, आज का लोग पुरानी टीचिंग की खिल्ली उड़ाते हैं, आज सब कंप्यूटर हैं कंप्यूटर।
4: क्या है जी, किसकी कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं?
2: वाह वाह बहन, और किसी की नहीं, तुम्हारे भाई को आधुनिकता की बातें बताई जा रही हैं।
4: आपका भाई शंकर भाई,
2: अभी थोड़ी देर पहले
4: घर में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है। तुम खांस क्यों रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या?
4: हाँ भैया, एक हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं है।
3: डॉक्टर को दिखा कर दवा दिला दी है, दो दिन आराम करने से ठीक हो जाएगी।
2: ऑफिस से छुट्टी लेकर चार दिन आराम कर लो कौशल्या।
4: ठीक है भैया, अच्छा आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ।
2: अरे अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो, शायद करुणा इसी के लिए गई है, देखो आ भी गई। पता नहीं ये किस घर की बहू बनेगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए ये जिस घर भी जाएगी उस घर की महालक्ष्मी होगी।
4: मामा जी पता नहीं कौन सी महालक्ष्मी, मुझे तो इसकी चिंता ही लगी रहती है।
2: क्या हुआ?
4: क्या बताऊं भाई साहब, अब कहने के लिए तो इंटर पढ़ रही है ये, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ लिख रही है। इन्होंने तो उसे डॉक्टर बनाने की ठान ली है, पर वो तो हमेशा कृष्ण शास्त्री की कविता की पुस्तकें पढ़ती रहती है या फिर सुबलक्ष्मी का संगीत सुनती है, पाठ्य पुस्तकों को तो छूती तक नहीं वो।
2: कविता पढ़ना और लिखना अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई भी पढ़ने से डॉक्टर बन सकता है, लेकिन सभी पढ़े लिखे लोग कविता नहीं कर सकते।
3: लेकिन क्या कविता रोटी दे सकती है, मेहनत करके MBBS पूरा करने
2: आप
3: से
2: आप चाहते हैं कि करुणा MBBS या MD कर ले, यही ना? चीचा जी बच्चों को महान बनाना है, ऐसा सोचने में कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने विचारों को उन पर थोपना गलत है।
3: आजकल जब हम शिक्षा को खरीद रहे हैं तब उनसे होने वाले लाभ को भी मद्देनजर रखना है। अभिमन्यु भी यही सोचता है, हर काम में वो भी नफा नुकसान देखता है, ये उसका सहज गुण नहीं है। मेरी मेरी

0: परवरिशियों से ऐसा बनाया है। कौशल्या की परवरिश में पली करुणा ने प्रकृति और मनुष्य को प्रेम करने की आदत बना ली है, पर अभिमन्यु ने पूरी तरह भौतिकतावादी विचारों को पाला है।
1: वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बाप बेटे की सोच एक ही है।
2: पर जीजा जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अच्छा कौशल्या, अब मैं चलता हूं, अपनी तबीयत का ध्यान रखना।
3: अच्छा भाई साहब, नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: श्री हरि जी, करुणा का रिजल्ट निकल आया।
1: करुणा, करुणा
2: जी माँ,
1: तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, जल्दी से अपना रोल नंबर बता।
0: इसका नंबर मेरे पास है, लेकिन पेपर में वो नंबर प्रिंट नहीं हुआ है।
3: क्या मतलब?
0: मतलब और क्या श्री हरि जी, लड़की फेल हो गई है।
1: क्या? बोलते क्यों नहीं? इनका कहना सही है क्या? शैतान, तूने तो हमें डुबो ही दिया। हमने सोचा था तुम अच्छी तरह पढ़ लोगी, तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे हम।
2: आप लोगों का सोचना ठीक है क्या? साइंस मेरी समझ में नहीं आती है, मैंने पहले ही बताया था। आज सब्जेक्ट लेती तो आसानी से पास हो जाती।
3: अब सफाई मत दे, जो तू पढ़ना चाहती है उसे किसका उद्धार करेंगे?
0: अरे भाई, इंटर में फेल होने से इसने कोई बड़ा पाप किया है क्या? इसे तो वरदान मानना चाहिए।
3: वरदान? कैसा वरदान?
0: देखो, तुम्हारी बहन की शादी की उम्र हो चली है, अब पढ़ाई उसकी दिमाग में नहीं उतरेगी। हम तो इंतजार में बैठे हैं कि कब करुणा हमारी बहू बनकर आए। अब बताओ, ये हमारे लिए वरदान है कि नहीं?
1: भाई साहब, लड़की फेल हो गई तो शादी कर देंगे क्या? अभी उसकी उम्र ही कितनी?
0: उम्र से क्या मतलब बहन जी, जरूरत पड़ने पर लड़कियों को लड़के नहीं मिलते। सोच लीजिए, दहेज वहेज की कोई शर्त नहीं है, बस लड़के की पसंद है, इसलिए पूछना पड़ रहा है। अरे मैं तो हूं बोलता जा रहा हूँ श्रीहरि जी, आप भी तो कुछ कहिए।
3: पापा राव जी, आप शादी की तैयारियां कीजिए।
0: ठीक है श्रीहरि जी, आपने मेरी बात को समझा है। अच्छा बहन जी, नमस्कार, मैं चलता हूँ।
2: पापा, पापा आई एम सॉरी, फेल होना मेरी गलती थी। आप पढ़ाना चाहते हैं तो मैं मन लगा के पढ़ूंगी, लेकिन
3: शादी करना नहीं चाहते हैं? अरे कितनी मेहनत से हम तुम्हारे लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, पर तुम नहीं समझ रहे, अभी समझ गया है। और फिर लड़की की शादी कभी न कभी तो करनी ही है।
4: पापा, ये तो अच्छा हुआ कि कोचिंग सेंटर में 50,000 रुपए भरने से पहले रिजल्ट आ गया, नहीं तो बेकार में नुकसान होता।
1: अभी
4: करुणा की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेकार है कौशल्या। अब करुणा की हाँ या ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाप के रूप में मुझे भी तो अपना फर्ज पूरा करना है। तुम तैयारियां शुरू करो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ।

0: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए।
0: श्री हरि जी नहीं है क्या
1: जी? क्लब गए हैं अभी।
0: वो बड़े भाग्यवान है, बेटे को कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। घर कीमती सामान से भर गया, नौकर चाकर, बाहर घूमने के लिए गाड़ी, खूब ऐशो आराम है। कम खर्च में लड़की को हमारे घर भेज दिया।
1: जी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटी की शादी तो धूमधाम से की है हमने, सामान भी आपके मन मुताबिक दिया है।
0: उस समय आपके पास जो था वो दिया।
1: देखिए भाई साहब, लड़की को जितना देना चाहते थे उतना दिया। उसके पापा तो रिटायर हो गए हैं, मैं भी इस साल रिटायर हो जाऊंगी। अब पहले की तरह उधार लेने की हिम्मत नहीं है। देखिए, हम तो खुद लड़के के पास जिंदगी काट रहे हैं। इस समय आप पैसे की मांग करेंगे तो
2: हमसे नहीं होगा पापा राव जी।
0: ओह श्री हरि जी,

0: मैं सोच रहा था कि बहन जी के ना करने पर कम से कम आप तो सोचेंगे, पर आपने दो टूक जवाब दे दिया। अब मुझे क्या कहना है
1: भाई साहब? करुणा को
0: अजी, अपनी करुणा को अपने घर में ही रखिए खुशी से
1: जी।
0: पता नहीं कोई कृष्ण शास्त्री इस लड़की का साथी है। सुबह उठने से लेकर उसकी पुस्तक को पकड़कर घूमती है। उस पुस्तक से इतना प्रेम है तो उसी के साथ शादी भी कर लेती।
1: आप इंसान नहीं है, जानवर है। ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती?
0: सुन ली अपनी बेटी की बातें? याद रखिए, अगर ये मेरे घर में कदम रखेगी तो जलाकर राख कर दी जाएगी।
1: पापा, वो इतनी घटिया बात कह गए और आप चुप हैं? माँ, उस घर में मैं बहू नहीं बल्कि पैसा ऐंठने वाली मशीन हूँ। जब बचपन में मुझे नींद नहीं आती थी तो चंदा मामा का गीत गाकर मेरे मन में कोमल भावनाएं क्यों जगाई? अभी की तरह हर विषय में नफा नुकसान देखने का ज्ञान मुझे क्यों नहीं सिखाया? माँ बोलिए बोलिए। माँ ये देखो, यहाँ सब फूल मुरझा गए, वो महावृक्ष बरगद पौधा बनकर गमले में छिप गया। बेचारे मातृहीन बच्चों का रक्षक कौन है? कौन है माँ? पंख लगने के बाद बच्चे सब उड़ जाए तो पागल माँ का क्या होगा? क्या होगा पापा?

0: अभी तुम्हारी माँ कह रही थी कि निलेश की डेथ हो गई है।
1: हाँ डैडी, एक्सीडेंटल डेथ है।
0: तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ।
1: नहीं डैडी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं नहीं जा सकता।
0: काम तो हमेशा रहते हैं बेटे, मरा फिर लौट कर नहीं आता है। एक बार जाकर देखाते तो अच्छा होता, निलेश तुम्हारा खास दोस्त था।
1: अच्छा एक बात बताइए, मेरे जाने से क्या वो जिंदा हो जाएगा? कम ऑन डैड, दिस इज ऑल जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मैंने कहा ना मुझे बहुत अर्जेंट काम है।
0: तुम्हें हमेशा काम ही रहते हैं, जब देखो तब बिजी। अरे कहने के लिए घर में रहते हो, लेकिन तुमने कभी 5 मिनट हमें टाइम दिया है?
1: क्यों डैडी, आपके कमरे में एसी काम कर रहा है ना, बोरियत हो रही है तो कमरे में टीवी भी मौजूद है, बाहर घूम के आने के लिए कार भी है। डैडी ड्राइवर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? माँ भी तो है आपके साथ में।
0: बेटे तुमने हमें सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम तुम्हारी चीजों के रखवाले हैं। अपने बेटे के यहां हैं ऐसा नहीं लग रहा है। बेटा माँ बाप का भी मन होता है कि वो बेटे के साथ थोड़ी देर बात करें।
1: डैडी अगर प्रोग्रेस करनी है तो कुछ इच्छाएं तो अधूरी रहेंगी, उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। वैसे 25 साल पहले मुझे भी मां के हाथों खाना खाते आपकी गोद में सोने की इच्छा रहा करती थी, लेकिन मैंने पढ़ाई की दौड़ में बचपन को खोया और अब कंप्यूटर्स की दुनिया में दौड़ लगाते लगाते यह भी भूल गया हूं कि मैं एक इंसान हूं। छोड़िए डैडी, ये बहस करने को कोई फायदा नहीं होगा, मैं चलता हूं।
0: चला गया। बूढ़े मां बाप के लिए, मरे दोस्त के लिए 1 मिनट का समय नहीं है इसके पास। इतना भावहीन और निष्ठुर हो जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था।

0: बेटे अब तुमसे एक बात पूछनी है।
1: कौन सी बात माँ?
0: यही कि तुम सुब्बरामन की लड़की के साथ शादी करने वाले हो।
1: सोच तो रहा हूँ माँ, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया।
2: उनके बारे में तुम्हें अच्छी तरह मालूम है?
1: इसमें जानने के लिए क्या है डैड, लड़की ठीक है, पैसा भी खूब है, और इससे भी बढ़कर वो लोग मुझे कनाडा भेजने के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। डील फायदेमंद।

0: होगी,
1: इसलिए मैं सोचता हूं कि शादी कर ही लो।
2: जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे रिश्ते में भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हो तुम?
0: कम ऑन डैड, मानवीय संबंध सबका सब व्यापारिक संबंध ही है, और ऐसा आपने, खुद आपने मुझे घुट्टी के जैसे पिलाया है,
1: और आज आप नए ढंग से बात कर रहे हैं।
2: अभी तुम नहीं जानते कि सुब्बा रामन जी
0: एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, अनेक मामलों में मुख्य अभियुक्त है, ऐसा सभी कहते हैं। न्यूज़पेपर्स भी उनके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले सभी के सभी आत्महत्या करके मर गए हैं क्या?
1: डैडी, आजकल देखा यह जाता है कि किसने कितना पैसा कमाया है, यह कोई नहीं देखता कि वो पैसा कैसे कमाया गया है।
2: मगर हेलो, हाँ ओके डैडी, वो आपसे एक बात करनी है।
1: क्या है?
2: दरअसल मेरे एक दोस्त को विदेश जाने का एक मौका मिला है। बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से 4-5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं उसने, और इधर डॉक्टर्स ने उसके पापा की बाईपास सर्जरी के लिए कहा है। अब उन 4-5 लाख रुपयों को खर्च करने पर भी डॉक्टर्स उसके पापा की जिंदगी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है।
3: कौन है वो मित्र अभी? किसके साथ ये समस्या है?
2: वो मैं ही हूं।
3: तुम बेटे?
2: हाँ माँ, मैं।
4: अभी तुम्हारी माँ मौत से लड़ रही है, तुम इसे छोड़कर विदेश जाने के लिए
0: भावुक मत बनिए डैडी। अच्छा एक बात बताइए, मां की बाईपास सर्जरी कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं है डैड, लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन कराऊंगा, लेकिन 1-2 साल जिंदा रहकर मां कर भी क्या लेगी? हाँ बोलिए, बहुत होगा तो 1000-2000 रुपए महीने की पेंशन ही ले लेगी ना, और वो भी बहुत ही कम समय के लिए। और दूसरी ओर मेरे विदेश चले जाने पर हजारों हजार डॉलर घर बैठे बैठे आपको मिलेंगे।
4: अब तुम कहोगे कि मां की समाधि सोने से बनाओगे, मेरी जेबें डॉलर से भरोगे? अरे आज तक नफा नुकसान का हिसाब लगाते हुए तुम्हारा बढ़ना देखकर गर्व का अनुभव किया था, पर अपनी मां के प्राणों को बचाने में भी तुम नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हो। बेटा तुम्हें शाप देने को मन हो रहा है, शाप देने को मन हो रहा है मेरा।
0: ठीक है, शाप दीजिए, जरूर दीजिए शाप डैडी, लेकिन मुझे नहीं, उन माँ बाप को शाप दीजिए जो बच्चों को बचपन से नफा नुकसान का अंदाजा लगाने की मानसिकता सिखाते हैं। इस दुनिया में प्रेम और संबंध बेकारी की चीजें हैं, ऐसा वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। मनुष्य के बीच में व्यापार संबंधों को छोड़कर कोई संबंध नहीं होता है डैडी।
4: अभी
0: मुझे ऐसी शिक्षा देने वाली आप खुद अपने आप को शाप दीजिए।
3: मुझे क्या कह रहा है तू?
0: मां मेरे गर्भ में रहते हुए ही मुझ पर प्रयोग किए गए, कॉन्वेंट की पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक मुझे पैसे से पाला गया, पेड़ को पानी देने की तरह मेरी जड़ों में आप लोगों ने पैसे डाले हैं, पैसे। और इसीलिए आज मेरा यह शरीर पैसा मय है, और अब मैं आपको पैसा दे रहा हूं।
3: दे तो रहो पैसा,
0: बोलिए कितना पैसा चाहिए आपको? जितना चाहिए उतना लीजिए डैडी, जितना चाहिए। डैडी, आपने कभी इंसान के प्रति प्रेम और विश्वास की बातें मुझे बताई? बताई होती तो आज आपको भी थोड़ा सा प्यार और अनुराग मिलता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है डैडी।
3: तेरी बातें सुनते सुनते मेरी मर जाने की इच्छा हो रही है।
0: क्या बात कर रही हो मां?
3: लेकिन ये इसकी गलती नहीं है, हमने ही इसे ऐसा बनाया है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपने बेटे को इंसान से प्रेम कर...

0: आइए भाई साहब।
1: शंकर भैया हमारा अभिमन्यु।
2: मामा जी आप तो जानते ही हैं कि मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ
1: और इधर इसकी माँ इलाज के इंतजार में है।
2: हाँ मैं जानता था कि कभी ना कभी ऐसा होने वाला है। शीशा जी आज हमें पैसा उगलने वाली मशीन नहीं चाहिए बल्कि मनुष्य चाहिए। माँ बाप और देश के साथ प्रेम करने वाले मनुष्य चाहिए।
3: शीशा जी मैं कौशल्या और करुणा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन्हें पैसे की नहीं प्रेम की जरूरत है।
2: हाँ

आज मैं अकेला खड़ा हूं। करुणा के साथ कौशल्या भी शंकर के घर में ही रह रही है और बेटा विदेश चला गया। ना किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। अब मुझे अकेला ही रहना होगा, बिल्कुल अकेला अकेला।

0: आज हामी स्टुडियोमा हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रम श्रोता सम्वाद कार्यक्रममा आकाशवाणी खरसाङका श्रोताहरूमध्येमा एकजना श्रोता साहिल देवानज्यू र यहाँलाई हामीले एउटा अवसर दिउँ आकाशवाणी खरसाङमा कुराकानी गर्ने यसरी नै अरू श्रोताहरूले पनि हाम्रो आकाशवाणी खरसाङलाई सुन्दै गर्नुहोस् सुनिरहनुहोस् तपाईँहरूमध्येमा पनि कसैको पालो आउन सक्छ र कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ त्यो पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ डाकपुतली कार्यक्रममा पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ र अरू कुनै पत्रको माध्यमद्वारा पनि तपाईँले लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ साहिल देवनज्यू तपाईँले आफ्नो तपाईँ आज आकाशवाणी खरसाङको स्टुडियोमा आउनुभयो कुराकानी राख्नुभयो आफ्नो पक्षमा तपाईँलाई सोध्न अथवा बातचितको क्रममा कुनै कुरो बात गर्न बिर्सिए जस्तो लागिरहेछ भनेदेखिलाई तपाईँले ती कुराहरू भन्नुहोस् अनि त्यतिकै हामी यो कार्यक्रम पनि अन्त गर्नेछौँ
1: हजुर अब त्यस्तो भन्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो त केही पनि छैन है अब
0: किनभने तपाईँको यो मौका हो किनभने सधैँ चाहिँ सुन्ने मान्छे हो आज चाहिँ तपाईँ बोल्ने ठाउँमा पुगिराख्नु भएको छ त्यसोसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो अवसर प्रदान गरिएको छ
1: मेरो चाहिँ खासमा त्यस्तो केही छैन अब श्रोताहरूलाई यो भन्न चाहन्छु है रेडियोहरू सबैजनाले सुनिदिनुहोस् सबैजनाले अब प्रोग्रामतिर उयो गरिदिनुहोस् उयो प्रेजेन्ट हुनुहोस् प्रोग्रामतिर है म त्यही भन्न चाहन्छु अन्त तपाईँहरूले पनि मलाई यसरी आज एउटा लिसनरको रूपमा बोल्ने अवसर दिनुभयो स्टुडियोमा है तपाईँ अनि आकाशवाणी परिवारलाई म यहाँबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु
0: र कुराकानी गर्नुभयो आकाशवाणी खरसाङमा आउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
2: आदरणीय टर्मिनल भवनका उद्घाटन गरेंगे 480 करोड रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं
3: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई पैकेजिंग टेक्सटाइल ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा इस चरण से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जोधपुर
2: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है करों में बदलाव माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धा

0: अंजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पुनः स्वागत छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रमा। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम अजम्बरी गीतहरू।

0: मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में

0: जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारको प्रसारणपछि सबै आदरणीय श्रोताहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत जनाउन चाहन्छु आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रमा एफएम 103.5 मेगाहर्जमा। समय यस बेला मध्याह 12:05 भइरहेछ। दिउँसोको यो समय हो मनोरञ्जनको। त आउनु श्रोता, अब आरम्भ गरौँ तपाईँ सबै श्रोताहरूद्वारा अनुरोध फिल्म सङ्गीतको कार्यक्रम तपाईँको अनुरोधमा। आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् फिल्म बन्टियर बबली फिल्मबाट आलिसा चिनोई, शंकर महादेवन र जावेद अलीको आवाजमा, शब्द छ गुलजारको, संगीत शंकर ईशान लोयको। यस गीतको लागि अनुरोध पठाउनु भएको छ चित्रे बस्ती खरसाङबाट नितु देवान, साहिल देवान अनि किशोर दिवान साथै सम्पूर्ण परिवार। कोटुवा नारायणपुर बाबापट्टीबाट ओम प्रकाश राई, श्रीमती उषा राई, अमित राई, ह्याप्पी राई। दुविया नेवादा गाजीपुरबाट प्रतीक राई, श्रीमती रोशनी राई, प्राञ्जल राई। शेरपुर कला गाजीपुरबाट अवधेश राई, श्रीमती प्रीति राई, नवनीत राई। मुजाहिदपुर पूर्वटोला भागलपुरबाट मोहम्मद राजु खान, जहाँगीर खान, सबनम जानम, खैरुबाई, रुबी बेगम, राज खान, आयन खान, मोहम्मद खातुन र आलिया। अररिया रजोखर बजारबाट मोहम्मद शरीफ आर्जू, मोहम्मद मोहसिन आर्जू, बाबु नवाब आर्जू, मोहम्मद सरफराज खान, अफजल पानोला। मेन रोड रानीगंजबाट नुसरत जानम, फरजाना खानम, सयना खानम। बंगाल रोड जोकीहाटबाट सौम्या नाजनीन, रुकैया र आफरिन र रेहना प्रवीण।

0: ये कैसी शर्ट पहनते हो, ये कैसे बाल कटाते हो, गाड़ी तेज चलाते हो, तुम जल्दी में क्यों खाते हो, गिव मी अ ब्रेक, तुम्हें बदलने को।
1: हाँ दोस्तों श्रोता, यस गीत का साथै अब आजलाई पूरा हुन्छ फरमाइसी फिल्मी गीत को कार्यक्रम तपाईको अनुरोधमा। समय मध्याह्न 12:30 भयो। हाम्रो अघिल्लो प्रस्तुति मेलोडी टाइम आनन्द लिनुहोस् पाश्चात्य संगीतको अनुरागको साथमा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर

0: दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले चार दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और

0: मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों

0: के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोहल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी को नेपाली प्रसारण सेवा समय दिउँसोको 2:30 भयो। अब आउनुहोस् सुनौ लोक अनि आधुनिक गीत। प्रथम सुन्नुहोस् लोकगीत सुचिता खातीको आवाजमा।

जिनका अनुभव रहा उनके अनुभव का लाभ हमें मिला है। अभी कुछ दिनों पहले सीएपीए के सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा में भी हमें उनका मार्गदर्शन मिला था। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता है, दिशा देता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र बोस जी, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस विधानसभा के अंदर प्रशिक्षण समारोह आयोजन किया, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक जिनके विधायक रहने का अनुभव है, सामाजिक राजनीति क्षेत्र में अनुभव है, अभी पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहता है, तपस राय जी, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन आपको मिला, उड़ीसा की अध्यक्ष, सिक्किम के अध्यक्ष और अन्य माननीय अध्यक्ष महोदयों का भी, सांसद महोदय का मार्गदर्शन आपको मिला, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, निश्चित रूप से मुझे पश्चिम बंगाल में बहुत सालों बाद आना हुआ। मैं 7 साल से लोकसभा अध्यक्ष के नाते दायित्व निभा रहा हूं, लेकिन इस विधानसभा में लंबे समय बाद प्रशिक्षण समारोह आयोजन हुआ और प्रशिक्षण के साथ देश और राज्य के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका मार्गदर्शन मिला। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी धरती पर तप तपस्या से जो अल्प आयु के अंदर जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद देश और दुनिया के अंदर उस कालखंड के अंदर उन्होंने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का ध्वज लहराया, नेतृत्व किया, उनको याद करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी को जब हम याद करते हैं तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति शह शरीर रहे न रहे, लेकिन व्यक्ति का जीवन दर्शन, उनका विचार, उनका कर्तव्य और लंबे समय तक उनका दिया गया योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन भी देश के युवाओं को सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक नेतृत्व को एक नई दिशा देता है, हमेशा ऊर्जा की, समर्पण भाव की, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हम मानव जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं और युवाओं की ऊर्जा का सामर्थ्य क्या है, ये स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है। और आपको भी यही दायित्व आज मिला है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है। ये विश्वास, ये भरोसा कायम रहे, हम उनके विश्वास, भरोसे, उनके आकांक्षाओं को भी पूरा करें और उस राज्य के विकास की नई इबादत भी लिखें, क्योंकि ये राज हमेशा विचारों के, आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति,

और अलग अलग कालखंड के अंदर एक नए बदलाव को, राष्ट्र को नई दिशा देने का राज्य रहा है। और इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कालखंड की विधानसभा के सदस्य के रूप में आपके विधानसभा के अंदर आपके वक्तव्य, आपके विचार, आप संसदीय संवाद, चर्चा, लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा, चुनौती और उनको सपनों को पूरा करने का दायित्व आपका है। और मुझे खुशी है, दो दिन तक आपने जिस गंभीरता से, जिस तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, मनोयाग के साथ, मनोयोग के साथ जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है वो आपके जीवन में नई दिशा देगा। लेकिन सीखने और अनुभव और विचारों का साझा करने में कोई विराम नहीं होता, ये तो हर रोज सीखना पड़ता है, हर रोज अनुभवों को साझा करना पड़ता है। और तकनीकी डिजिटल युग में तो हमें रोज देश और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप यहां से नई चेतना लेकर जाएं और जीवन में इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता कि आपको विधानसभा का नेतृत्व करना, राज्य के नेतृत्व करने का मौका मिला है। और हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक बने, हम एक विधानसभा के विधायक हैं, यह हमारा नेतृत्व हमें करना चाहिए, लेकिन राज्य की आकांक्षी राज्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कार्य योजना, कानून बनाना, राज्य के विकास, नवाचार, उसमें किस तरीके से विधानसभा संवाद चर्चा से हम राज्य को नई दिशा दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। और इसलिए जीवन में हमेशा उत्साह रहे, उमंग रहे, पैर में चक्कर रहे, हमेशा अपने क्षेत्र सहित राज्य में घूमते रहें, पैर में चक्कर, सीने में आग हो बदलाव की, नया देने की, और सिर में ठंडक हो जब संवाद करें, चर्चा करें तो ठंडे दिमाग से चर्चा करें, जब जन संवाद करें तब भी और विधानसभा के अंदर भी। नारेबाजी करना, सदन को व्यवधान करना, सदन के गतिरोध करने से कभी कोई नेता नहीं बनता। अगर सदन का नेता बनना है तो तर्क से बात करनी होगी, तथ्यों से बात करनी होगी, विचारों का संप्रेषण करना होगा, और किस तरीके से जो कुछ भी अनुभव है उस अनुभव को इस विधानसभा के माध्यम से, और जो नवाचार कर रहे हैं उस विधानसभा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम करें। इसलिए विधानसभा का ये लोकतंत्र का मंच बहुत प्रभावी होता है। यहां से बनने वाला हर नेता राज्य देश का नेतृत्व करता है। इसलिए मेरा बार बार आपसे आग्रह है कि सीखने और सिखाने के साथ जो कुछ भी समाज जीवन के अंदर एक मतदाता से आप कुछ चीजें मिलेगी, विधानसभा के अन्य सदस्यों से मिलेगी, अन्य विधानसभाओं के सदस्यों से विचार मिलेंगे, हमेशा विधानसभा के अंदर जब आप अपने विचार को रखें तो सब आपके विचारों को सुने, जब आप तर्क रखें, तथ्य रखें, विचार रखें, देश और राष्ट्र हित भी हो, प्रदेश की जनता में बदलाव कैसे किया जा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आप समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज आप,

जनता आपको इसलिए चुनकर भेजी है, भेजती है कि आप उनकी कठिनाइयों, उनकी चुनौतियों को तो सदन में रखो सही, लेकिन उसके साथ साथ इस राज्य के विकास के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी आप हो, क्योंकि सरकारों को भी विधानसभा के एक इस कक्ष से जो आवाजें मिलती है, जो अलग अलग स्वर मिलते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, अलग अलग विचार मिलते हैं, हर विधानसभा की कठिनाइयां चुनौतियां मिलती है, उसको सरकार अगर सकारात्मक रूप से ले कि एक विधायक ने एक प्रश्न उठाया तो क्यों उठाया है, क्या कठिनाई चुनौतियां थी, एक विधायक ने अगर प्रदेश की कुछ चुनौतियां उठाई है तो क्यों उठाई है, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है तो समाधान होता है और समाधान होने से ही राज्य का विकास होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि जीवन में सादगी रखें, शुचिता रखें, विहार में विनम्रता रखें, लेकिन हमेशा प्रदेश के विकास की आग आपके सीने में लगी रहनी चाहिए, हमेशा लोगों के विश्वास भरोसे को और मजबूत करने का काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब इस विधानसभा की चर्चा संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, हम इसकी उच्च कोटि की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा हो जहां चर्चा संवाद की गुणवत्ता बढ़े, जहां पर सब विचारों को आए, सबके अनुभव आए और निश्चित रूप से उन अनुभवों की का लाभ समाज और देश को मिले। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब कानून का विषय हो तब हम जनता से फीडबैक भी लें, सरकार को सुझाव भी दें, विधानसभा में कानून बनते हुए अपना पक्ष भी रखें, क्योंकि कानून जनता के लिए बनते हैं। जब विधानसभा कानून बनाती है तो हर विधानसभा सरकार का एक ही मत रहता है कि उस कानून से उनके जीवन में कैसे सुगमता आ सकती है, उनकी जीवन के अंदर जो दिनचर्या के काम में जो अवरोधक आते हैं उसमें अवरोधों को दूर करने में काम आते हैं। और इसीलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रिफॉर्म, हर चीज में रिफॉर्म की आवश्यकता है। एक आम व्यक्ति की चुनौतियों के अंदर सरकार का कोई भी सिस्टम अगर चुनौतियां बनता है तो उसका समाधान, उसका रिफॉर्म इसी विधानसभा से निकलना चाहिए। हमें एक आदमी को जितनी हर कार्य में सुगमता हो, एक आदमी को लगे कि ये शासन मेरा है, ये शासन के विधायक मंत्री मेरे जवाबदेही से काम कर रहे हैं, उतनी शासन की सफलता होगी। और इसलिए आपकी सफलता भी ये होगी कि आपके पास अगर एक सामान्य व्यक्ति भी आता है तो सामान्य व्यक्ति के और कागज जो उसकी आकांक्षा है वो कागज नहीं है, उसके सपने हैं। आप उसके कागज को, उसकी आकांक्षा को, उसके सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, जवाबदेही से काम करना। अगर एक सफल विधायक बनना है जवाबदेही उत्तरदायी हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में शुचिता हो। हम समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज हमारे मार्गदर्शन पर चलता है। इसलिए राजनीति के अंदर सामाजिक जीवन में हमारा जीवन जितना साफ सुथरा, हमारा जीवन जितना आम जनता के लिए सुलभ होगा, हमारा जीवन लोगों को पारदर्शी नजर आएगा, उतनी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, संसदीय संवाद की गरिमा को बढ़ाएंगे, तथ्यों तर्कों से इस विधानसभा में चर्चा करेंगे और ये राज्य की विधान

0: विधानसभा समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करे, जवाबदेह से काम करे, उत्तरदायी शासन प्रशासन पारदर्शी बने, इसके लिए आप कटिबद्ध होकर कड़ी मेहनत होकर काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी को, विधानसभा की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया। लगातार जीवन में हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे, अनुभवों को साझा करते रहेंगे, विचारों को साझा करते रहेंगे और अपने ज्ञान को अर्जित करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना बधाई।
1: थैंक यू सर फॉर योर एनरिचिंग वर्ड्स। मे आई नाउ एड्रेस रिक्वेस्ट श्री आर एन रवि, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉर हिज एड्रेस।
2: हमारे बीच उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतिंद्र बोस जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री श्री तपस राय जी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम तथा अन्य राज्यों के विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष महोदय और महोदया, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सारे माननीय सदस्यगण, At the very outset, I express my sense of gratitude to the Speaker, Vidhan Sabha, West Bengal Assembly, Sri Ratindra Bose Ji, for giving me this opportunity. And I am indeed grateful to Lok Sabha Speaker Sri Om Birla Ji for making the team of Pride, this Parliamentary Research and Training Institute for Democracy team, to come and share with our newly elected members. And I know that a large number of those among you are first timer. How to make the best of your new responsibility in the assembly? You are fortunate, my dear friends, that you had the advantage of listening to so many stalwarts, so many veterans, those who have spent their lifetime in public service. We heard Honorable Lok Sabha Speaker mark his every word, every advice. Think over it and try to translate it in your day-to-day life. Friends, as a member of this Legislative Assembly, each one of you each one of you.

0: श्रोताले अहिले सुन्नुभयो जहरीला इन्सान फिल्मबाट किशोर कुमारको स्वरमा। अहिलेलाई फिल्म सङ्गीतको कार्यक्रम यतिमा नै पुरा गरिन्छ। हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेछौँ र अब प्रसारण गर्न लागिरहेछौँ कार्यक्रम गाउँले सभा। तर त्यसअघि सुन्नुहोस् यो छोटो व्यापारिक सन्देश।
1: बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताले अहिले सुन्नुभयो कुमार सानु अनि कविता कृष्णमूर्तिको युगल आवाजमा 1942 अ लभ स्टोरी फिल्मबाट। अब अन्तमा सुन्नुहोस् बाबुल सुप्रियो अनि अलका याग्निकको स्वरमा हम तुम फिल्मबाट।

0: सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लेप्चा गीत रिक्मित लेप्चाको स्वरमा। हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेछौँ र अबको केही क्षणमा नै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रको समाचार सम्प्रसारण गरी सुनाउनेछौँ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

0: श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे

0: और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी

0: ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायास ही याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा

0: आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
3: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
3: विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से अलग नहीं होगे। यहां की वायु, यहां के मेघ और यहां के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
3: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।

0: मेघ मन और मालवा अभी आपने ये रूपक सुना आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का साथियों कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता बंधन दमन और शोषण में लिपटी हुई है निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में अपने प्रभाव में प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया
2: देखिए ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं समय बदलता है युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं आवश्यकताएं बदलती हैं मनुष्य के सरोकार बदलते हैं तो उसके साथ साथ कई कहानियां कई रचनाएं कई कविताएं कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं फिर से प्रकट हो जाते हैं ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई
2: देखिए बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा एक संयोग है मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी सबसे चर्चित कहानियों में कफन है पूस की रात है लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी हाँ एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है बड़े भाई साहब जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है अद्भुत कहानी है अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा की

0: की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आए। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशरफी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। उनके

0: माता के हैं, लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था, और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गून जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभिनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित

0: तो नहीं होती। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गा जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथीपुरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50 60 70 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा।

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Yaman in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Hamir. Pandit Arnob Chattopadhyay concludes his Khayal recital with Rag Vachaspati. The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: काल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल

0: पर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility an